0: और आइए आप सुने लता मंगेशकर की आवाज में तुलसीदास की पारंपरिक भक्ति रचना।
1: ज्ञान के बिना कर्म क्लेशमय हो जाता है और कर्म के बिना ज्ञान बांझ रह जाता है। भक्ति का उदय होते ही ज्ञान और कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, पर इस भक्ति का उदय हो कैसे? भजमन श्री रामचंद्र।

0: अब हम आपको सुनवाते हैं गोपाल शर्मा और सुखदेव कुमार की आवाज में तुलसीदास की रचना मेरो भलो कियो राम।
1: ज्ञान, कर्म और भक्ति, जब इन तीनों का संगम होता है तब जीव का ब्रह्म राम से मिलन होता है, उसमें वो एकाकार हो जाता है।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डीटीएच चैनल रागम। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर ख्याल गायन. कलाकार हैं चंदना भट्टाचार्य. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समीर नंदी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सनातन गोस्वामी. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर ख्याल गायन. कलाकार हैं चंदना भट्टाचार्य.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. Listen first to a khayal in the rag Jaunpuri. Our artist is Chandana Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla is Samir Nandi and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to a khayal in the rag Jaunpuri. Our artist Chandana Bhattacharya.

0: अभी आप राग जौनपुरी पर ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे चंद्रा भट्टाचार्य। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समीर नंदी और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सनातन गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग ललित पर सितार वादन। कलाकार हैं काजल चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग ललित पर सितार वादन। कलाकार हैं काजल चट्टोपाध्याय।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग जौनपुरी। आवर आर्टिस्ट वॉज चंदना भट्टाचार्य। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वॉज समीर नंदी एंड ऑन द हारमोनियम वॉज सनातन गोस्वामी। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल। Listen to a sitar recital in the rag Lalit. Our artist is Kajol Chattopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy. Listen now to the sitar in the rag Lalit. Our artist Kajol Chattopadhyay.

0: अभी आप राग ललित पर काजल चट्टोपाध्याय से सितार वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग ललित। आवर आर्टिस्ट वॉज काजल चट्टोपाध्याय। Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत.
2: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर का ध्रुपद धमार गायन. आइए सुने राग मुल्तानी में ध्रुपद. बोल हैं बंसीधर पिनाकधर.
1: दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक.
2: इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर. लिसन राग मुल्तानी, इन विच यू लिसन ध्रुपद. बोल बंसीधर पिनाकधर.

0: ये था राग मुल्तानी में ध्रुपद। पखावज पर आपके साथ संगत कर रहे हैं पंडित अर्जुन शेजवार।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: कार्यक्रम को जारी रखते हुए उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग देश में धमार। बोल हैं सांवरे रंग डार दियो। दैट वाज राग मुल्तानी।
1: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
0: यू आर लिसनिंग ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर, अकंपनिंग हिमान पखावज, पंडित अर्जुन शेजवर। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर प्रेजेंटिंग राग देश, इन विच यू लिसन धमार। बोल सांवरे रंग डार दियो।

0: ये था राग देश में धमार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर का ध्रुपद धमार गायन। पखावज पर संगत कर रहे थे पंडित अर्जुन शेजवार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग देश। With that, we conclude Dhrupad Dhamar recital by Ustad Nasir Aminuddin Dagar, accompanied him on Pakhavaj, Pandit Arjun Shezwar. This was the contribution of AIR Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदुषी रीता गांगुली से विजय शंकर मिश्रा की भेंट वार्ता.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present for you an interview with Vidushi Rita Ganguli. Interviewing her is Vijay Shankar Mishra.
3: Namaskar. मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ. हम सभी कलाकार की कला का रसास्वादन करते हैं और मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा भी. लेकिन क्या कभी हमने और आपने यह सोचा है, गान गायक का नहीं व्यापार उसकी विकलता है, राग वीणा की नहीं झनकार उसकी विकलता है, भावनाओं के मधुर आधार सांसों से विनिर्मित गीत कवि उर का नहीं उपहार उसकी विकलता है. तभी तो कभी कभी गायक भी पीछे मुड़कर पूछ बैठता है, जिन गीतों पे तुम मोहित हो क्या वे गान समझ पाए हो. मित्रों, संगीतकार और उनकी कला को समझने और समझाने का एक विनम्र प्रयास है महफिल, जिसमें आज हम बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कला नेत्री विदुषी रीता गांगुली जी के साथ उपस्थित हैं. रीता जी ने ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और गजल सीखा, लोक संगीत सीखा, अभिनय किया, किताबें लिखी, माइम एवं मूवमेंट का प्रशिक्षण दिया, संगीत विषयक शोध कार्य किया, देश विदेश में संगीत विषयक आयोजन किया और हर क्षेत्र में अपनी अप्रतिम प्रतिभा का छाप छोड़ा. यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी महफिल को गरिमा प्रदान करने के लिए विदुषी रीता गांगुली

0: जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं और हम इन पंक्तियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। चमन तुमसे इबारत हैं, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। रीता जी बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत।
1: मेरा भी नमस्कार स्वीकार करिए। खासकर ये इस महफिल को सुनने वाले सबको मैं बधाई भी देती हूँ कि टेलीविजन छोड़कर ये सुन रहे हैं, अपने में ही बहुत बड़ी बात है कि सुनने की बात ही अलग है, क्योंकि देखना है तो सिर्फ उनको देखना है जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो सुनना ही बेहतर है ताकि कुछ हमारे पल्ले भी पड़ता है।
0: शुरू से ही शुरू करते हैं। लखनऊ के एक संभ्रांत कला अनुरागी परिवार में जन्मी रीता गांगुली संगीत के प्रति कैसे आकृष्ट हुई? सर्वप्रथम अपनी संगीत शिक्षा के विषय में आप कुछ बताएं।
1: मेरी जो पैदाइश लखनऊ की है उसमें खास बात थी कि एक्सीडेंटली मैं अचानक रातों रात 3.5 साल की थी कि सारी यूपी की बेबी रीता बन गई। सरोजिनी नायडू जी तब हमारे गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। उनको पता नहीं क्यों मैं बहुत भाग गई और जहाँ भी जाती थी साथ ले जाती थी, और मैं क्या करती थी भगवान जाने। लेकिन ये पता है कि पहला मैंने शुरू पहले किया था बच्चे के हिसाब से नाचना शुरू किया था, और आपको हैरत होगी कि पहली नृत्य कार्यक्रम जो अनचाहे मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे, मैं खुद ब खुद स्टेज में जाके नाचने लगी और वो हटा नहीं पाया हमको। आपको आप सोच सकते हैं हमारे पीछे संगत कौन कर रहे थे? मैहर बैंड उस दिन बजा रहे थे और सामने छोटी सी जगह खाली थी और बाबा अलाउद्दीन पीछे करके खड़े थे और कंडक्ट कर रहा थे। उसमें रविशंकर जी, अली अकबर जी, पन्नालाल घोष ये सब थे और वो कंडक्ट हो रहा था। मैं जो जिसने हमको हाथ पकड़ रखा था मैं उसका हाथ छुड़वा के स्टेज में जाके जब तक बैंड चला तब तक नाची, और तब तक हमारे माँ बाप विंग में बहुत आंखें दिखाने लगे, बहुत उंगलियां दिखाने लगे, चलो फौरन निकलो, लेकिन मैं निकली नहीं। दूसरे दिन जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा था वो भी बहुत उन्होंने गाली गलौज किया मेरे माँ से कि आप बच्चे क्यों पैदा करते हैं और लेके क्यों आते हैं साथ, प्रोग्राम में लाना नहीं चाहिए आपको, सारा हमारा काम बिगड़ गया। और दूसरे दिन फ्रंट पेज में मेरी तस्वीर थी और ये भी आया, बधाई भी उनको मिली कि क्या एक छोटी सी लड़की से उन्होंने चमत्कार पैदा किया। तो ये मेरी शुरुआत थी। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा हमारे घर के बच्चे गाना बजाना नहीं करते, अब बड़ी हो जाओगी तो बंद करना है। तो मैं तो बहुत चाहती थी थोड़ा सा गाऊं कुछ नाचूं, लेकिन बहुत सख्त थे उन्होंने, बहुत प्यार करते थे, हमें बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा हमारे घर के बच्चियां पढ़ाई लिखाई करती, तुम विदेश चली जाओ, बड़ी हो जाओ, अच्छा करो, जिस दिन सेकंड आओगी उसके बाद, लेकिन और ये सब हमारे घर में ये सब नहीं सुनना चाहते। तो सेकंड नहीं आई मैं, हमारे साथ शर्त ये थी कि अगर जिस दिन आप क्लास में सेकंड आ जाओगी उस दिन आप खुद ब खुद छोड़ दीजिएगा, ठीक है, शर्त मंजूर? मैंने कहा जी मंजूर। तो उसके बाद पढ़ाई मेरी और बढ़ गई, इसमें कोई दो राय नहीं, गाना वाना तो नहीं गा सकती हूँ, ये तो मछली का काम है तैरना, और प्रोफेशनल गाने बजाने वाले जो हैं उनका है काम गाना बजाना, मैं तो इबादत की तौर से करती हूँ और मुझे सर झुका के करती हूँ कि ये जितना भी आ गया गुरुओं की कृपा से। लेकिन पढ़ाई में मैं कभी सेकंड नहीं आए उसके बाद। अभी हमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, मुझे नहीं पता था कि मैं गा भी लेती थी, क्योंकि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री मेरे ऊपर बनाई, उसमें मैंने देखा कि 3.5 साल की थी, मुझे एक 5 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अच्छा। तो अचानक ख्याल आ गया हाँ ये बात सच है कि हम 5 रुपए उस जमाने में बहुत होते थे, तो पूरे घर वालों को लेके, लखनऊ में ये सब क्वालिटी वगैरह नहीं था, तो हम मैंगलोलिया करके एक जगह थी वहां पर जाके पूरे परिवार को हमने आइसक्रीम खिलाया था, वो आनंद आज भी मुझे याद है। तो बहरहाल इस तरह से चलती रही। उसके बाद मैं कोई 11 साल की थी तब मैंने अपना स्कूल खत्म कर लिया था इन्हें सीनियर कैम्ब्रिज, उसमें भी ईश्वर की कृपा से मैं प्रथम आई, तो बाबा ने फिर वो रोक ही नहीं सके। यही वजह थी कि मैं शांति निकेतन चली गई, क्योंकि और कहीं मुझे दाखला नहीं मिला, मैं छोटी थी, वो कहते नहीं ये तो स्कूल में होना चाहिए, हम कॉलेज में दाखला नहीं लेंगे।

0: तो बहरहाल मैं वहां मिली। शर्त यह था कि गाना सीखूंगी, नाच सीखूंगी और पढ़ाई भी करूंगी। इसी तरह से मेरी शुरुआत हुई, बाकायदा तालीम जिसे कहते हैं। तो इससे पहले हालांकि मैं सच पूछिए तो मेरे पिताजी को शौक था गाने का, वो चाहते थे, ये बंगालियों में होता है, बंगाली और कायस्थों में ये होता है कि ये लड़कियों को गाना बजाना जरूर सिखाया जाता है, तो हमको भी सिखाया गया, गोपेश्वर बाबू जी को लाया गया। ये हैं गौहर बानी के बिष्टुपुर घराने के बिल्कुल जिसे कहते हैं खलीफा, बहुत बुजुर्ग थे और उन पे मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्यों कर रहे हो, सीधा गाना सिखाओ, रे रे रे रे नहीं करना है। तो बाबा अगर होते तो बहुत नाराज होते थे, बेटा इस तरह से बात करते, तो कहते नहीं नहीं नहीं काना ही, इसकी आवाज अच्छी है, ये कर लेगी कर लेगी, ठहरो मैं कुछ हल्का चीज सिखाता हूँ। तो उन्होंने पहले हमको जो सिखाया था
1: जी,
0: वो एक बिहाग में
1: जी,
0: क्योंकि ये एक घराना सिलसिला है जो कि ये तो पूरी भक्ति कल्ट की देन है ध्रुपद गाय की
1: जी।
0: और वो लोग खासकर ये संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय जो है, ये लोग कृष्ण भक्त है
1: जी।
0: तो जाके बंगाल में बस गैनवा द्वीप के पास, और वहीं से ये यहाँ पे ये लोग सीखे। वो एक उन्होंने हमको सिखाया था, थोड़ा सा पहला लाइन बोल
1: जी, बिल्कुल।

0: अब ये उन्होंने सिखाया तो हमने कहा कि इसको इसका ये रोता क्यों है, ये रोता क्यों है, किसका आंख में क्यों नैन भर आ रहा है, क्यों इसका नैन भर आ रहा है, मुझे ये गाना नहीं सीखना है। तो बोले ये मियां तानसेन की रचना है। तो बोले मियां तानसेन इतना खराब रचना क्यों करे, हर वक्त रोता क्यों है लोग। तो ये मेरी आर्ग्यूमेंट थी
1: जी, जी।
0: ये मेरे बाद में एक बार गोपेश्वर जी से फिर मुलाकात हुई जब मैं बड़ी हुई, शांति निकेतन में वो विजिटिंग प्रोफेसर हो क्या थे, तो उन्होंने कहा ये मेटा क्या विषय का बोई तो हमारे छात्री। सो और जितने दिन रहे सिर्फ मुझे ही सिखाया उन्होंने। और इसमें शिकायत भी हुई थी वाइस चांसलर के पास जाके, आपने ये बुला लिया एक विजिटिंग प्रोफेसर, वो सिर्फ एक ही बच्ची को सिखाते हैं और किसी को, मतलब मेरी मर्जी है मैं किसको सिखाऊं, हम चले जाते हैं। तो इस तरह से मेरी संगीत की शुरुआत हुई। और उस वक्त एक अद्भुत गायक थे ग्वालियर घराने के, वीवी वाजलवरकर
1: जी,
0: जो कि शांति निकेतन में अध्यक्ष थे संगीत के। उसके बाद इनके नीचे रविंद्रलाल रॉय जो कि मालविका कानन की जी के पिताजी थे,
1: अच्छा।
0: ये भी सिखाने आए थे। तो फिर ख्याल की तालीम शुरू हो गई। और ये ख्याल की तालीम जो उस्ताद जी जिसे हम कहते थे वाजलवरकर जी को, उनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी हम बोल नहीं सकते। ये गाना सुनना ज्यादा अच्छा लगता था और अपना गाना आज भी नहीं अच्छा लगता, तब भी नहीं लगता था, लेकिन कोई बात नहीं, एक चीज पसंद है। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि लोगों को एक गुरु नहीं मिलता, तो हमारे किस्मत में कोई आठ महान गुरु हुए जो कि अपने क्षेत्र में आखिरी थे। और ये मेरी सबसे खुशकिस्मती है कि मैं कोई प्रोफेशनल गाने बजाने की घर की नहीं हूं कि मुझे खुद ब खुद आ जाए
1: जी।
0: लेकिन उन्होंने बहुत प्रिय शिष्य करके मुझे ऐलान किया, बस यही मेरी जिंदगी की हासिल है।
1: क्या बात है। आपने ध्रुपद सीखा, ख्याल सीखा, ठुमरी दादरा सीखा, बेगम अख्तर जी से गजल सीखा, अल्लाजी राईबाई जी से राजस्थानी लोक संगीत भी सीखा। वह कौन सी बेचैनी है जो आपको इतने गुरुओं के पास लेती गई और आप अलग अलग विधाएं सीखती गई?
0: देखिए ये अथाह समुद्र है
1: जी।
0: ये तो आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते हैं। लेकिन सही माने में जो मेरा एक्सीडेंटल था, आप लोग नहीं जानते हैं, मेरे उस्ताद जो थे वो पंडित शंभू महाराज
1: जी,
0: वो नर्तक थे बहुत मशहूर, बिंदादीन महाराज के घराने के, अच्छल महाराज के छोटे भाई, वो इतना अच्छा गाते थे, कई लोगों को नहीं पता कि वो तो ऐसे गाते थे कि भीमसेन जोशी जी उनको उनसे पहली तालीम की उनके पास थी लखनऊ में, वो गए थे और बाकायदा उन्होंने सीखा। ये मैं

0: तो इसलिए कि बाद में मैं जब महाराज जी से सीखने लगी तो उन्होंने वो आते थे और शाम को महाराज जी तालीम वाले यकीन नहीं रखते थे, शाम को बैठते थे, उनका खूब दोनों का चलता था दौर और वो गाते थे। आप सोचिए उनका आलम क्या था कि जब छोटा ख्याल में आते थे वो स्पीड जो होता था भीमसेन जी उसके पैर पकड़ लेते, तब वो उरूज में गा रहे कि महाराज जी थोड़ा लय कम कर दें ताकि मैं भी तान गा लूं। सोचिए उनकी क्या तैयारी होगी। इनके गाने में बाबा नसीर करके बहुत मशहूर एक गायक उत्तर प्रदेश में हुए
1: जी।
0: उनसे उनकी तालीम हुई, उनसे बहुत असर उनके गाने में हुआ। एक वो जो पुकार है काकू भेद जिसके कहते हैं, वो अद्भुत उनका पुकार था। नृत्य से किसी को रुलाया जा सकता है वो मेरे महाराज जी कर सकते, नाच के रुलाते थे
1: जी।
0: और गा के आनंद देते थे। ऐसे कलाकार बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वो कई बार हमें अलग अलग चीजें सिखाते थे। यहीं पर उनके साथ तालीम मिल रही थी

वो हमें तालीम दे रहे थे और उस दिन हम गए थे बहुत सारी चीज लेके, बहुत बच्चे की तरह थे वो। उन्होंने कहा मुझे कांता सेंट ला दे, बहुत खराब सेंट था, तो मैं

ये गा रहे थे, अचानक दरवाजा खुला और एक मोहतरमा अंदर आई। महाराज जी से कहा, ये कहां से पकड़ ले हो, हाँ इसका नाम क्या हो, गात है बहुत अच्छा गात है। अरे हमका दे दिया। तो बहुत नाराज हुए, काहे काहे दे तो का, हमारे शागिर्द हो तुम। तो नहीं अच्छा सुनो बेटा, ऐसा है तुम गाना सीखोगे हमसे? तो मैंने कहा जी मुझे गाना सीखने की कोई इच्छा नहीं है, और जो सीखना है मैं मेरे उस्ताद सिखा रहे। मुझे इसमें बहुत गुस्सा है भाई, हमारे यहाँ लखनऊ में रसूलन भाई जी हमारे पिताजी के राखी बांधती थी, उससे ये फायदा होता था कि वो लखनऊ बनारस में तब कोई रेडियो स्टेशन नहीं था, तो वो बनारस से आती थी, होटल में रहती थी और जाती थी, उसका सारा देखभाल मेरे पिताजी करते थे, तो उनको तो बहुत सुन रखा था। लेकिन सिद्धेश्वरी जी का नाम हमें नहीं सुना ही नहीं था, जबकि वो इतनी मशहूर थी और पूरे महाराष्ट्र में उछाई हुई थी उन दिनों। उन्होंने हमको कहा कि अच्छा बेटा ऐसा है कि तुम्हारे उस्ताद जो भी गाएंगे, जो उनकी जिस्म से अदा होती है वो ये मेरे गले से अदा होगी, मंजूर? तो मुझे समझ भी नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, उतनी अकल भी नहीं थी, छोटी भी थी बहुत। तो उन्होंने वही शुरू किया होता,

और महाराज जी भाव बोलने लगे और गाने लगे। कोई 15 मिनट ऐसा उन्होंने समा बांधा कि हम बता नहीं सकते। अचानक कोई 15-20 मिनट के बाद हमें एक आवाज

0: ये 45 मिनट तक चलता रहा। ये रो रही गाते हुए, वो रो रही है गाते हुए, दोनों को देख के सुन के मैं भी जार जार रो रही हूँ, जैसे कि साक्षात सरस्वती उतर आई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुतों का गाना सुना, लेकिन वो सवेरे मैं भूल नहीं सकती। रोटे खड़े हो जाते आज भी बोलते वक्त,
1: मेरे खड़े हो गए।
0: अचानक सिद्धेश्वरी जी बजा रहे थे, मौजी राम जी थे तबले पे, वो अचानक उन्होंने कहा कि बेटा मैं पास हो गई। सिद्धेश्वरी जी मुझे पूछ रही, तो महाराज जी इतने बड़े से गाली बोल के, तो कहाँ है तू, है किसकी बेटी है, क्या मतलब, क्या ये पता भी है कौन तेरे से बात कर रही है, हा? तो ये हिम्मत की तेरे तू पास कराएगी इनको। हमने कहा कि कुछ बोला ही नहीं था, तो कहा ऐसे मत बोलो, अरे टेम्पटम बोली बोला था, इकर जायदा कुछ कही बो तो नहीं मानी है, छोड़ दिया तू तो, समू छोड़ दिया, इकर छोड़ दिया। बेटा मैं पास हो गई, जल्दी से अपना वो खोला, बैग खोला और 11 रुपए पान छा लिया, तो खाते ही थे, साबुत सुपारी भी था वो, और पान दे के कहा कि जल्दी मेरे पैर के पास दो, दो मैं गंडा बांध देती हूँ। तो इसका मन बिगड़ गई है, ये टेम्पटम बोली बोला था, बहुत जोर से बोला था, मुझे पता है टेम्पटम बोली मतलब अंग्रेजी बोला जी, जी, जी। फिर उसने कहा इंदिरा के खबर दे दिया हमका मिर्गल शागिर्द, अरे मूर्ति तोड़ के कहीं मूर्ति बना था, ये कच्चा मिट्टी है मैं बना दे, दैट्स व्हाट शी सेड। वो जमाना था जब सिद्धेश्वरी जी को लाया गया था दिल्ली शहर में, और बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि मालविका कानन, कानन जी, ये अपने माणिक वर्मा, ये लोग सब आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, उनके पास सीखने के लिए, स्पेशल वजीफा अच्छा। था वहाँ, तो सरकार ने अनाउंस किया था कि ताकि बनारस घराना जिंदा रहे और सिद्धेश्वरी जी का स्टाइल जिंदा रहे। इसी तरह से मेरा सिलसिला हुआ शुरू सिद्धेश्वरी जी से सीखने का। उनका ऐसा सिलसिला था कि एक मिनट का टाइम नहीं था, आप नहा भी नहीं सकती थी, नहाते वक्त काय का, अरे वक्त बर्बाद कर रहा था, वो तान लगा, पानी चला था तो तान लगा उसके साथ, ट्रेन में जाते तो ट्रेन का जो जिक जिक जिक जिक जिक जिक जिक उसके साथ तान, चल चल ऐसे बैठ के वक्त जाए कर वो, चल हमारे पास जाती टाइम ना हो, चल। और हमको गाना पड़ता था, 24 घंटे का सिलसिला चलता था। इतना प्यार उन्होंने दिया मैं बता नहीं सकती हूँ, और वो थी भी बहुत अच्छी औरत। उनके पास जो भी जब पैसा होता था, महारानी जैसा होती थी और सबको दे दुला देती थी। और ये बात भी सच है, उनके पास कई बार पैसे नहीं होते थे, फिर भी वो देसी घी मंगा के मेरे लिए छीमी की सब्जी बनाती थी। छीमी मतलब मटर, मटर को थोड़ा सा उबाल के उसमें छोंक के हमारे लिए, ताकि मुझे खुराक ठीक मिले। दूध का गिलास पिलाना, बादाम खिलाना, घी पिलाना, ये सब वो करती थी सवेरे रियाज के वक्त। भले ही उनके अपने पास पैसा नहीं होता था, तो भी वो कभी भी ऐसी उस्ताद बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो इतना प्यार करके उन अपने बच्चों को सिखाती हैं। हमें अभी भी याद है कि उनकी बेटी, दोनों बेटियाँ ही बहुत, छोटी बेटी तो बाद में गाने लगी सविता देवी, पहले तो सितार बजाती थी, लेकिन शांता दी बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उनकी शागिर्द नहीं थी, इन लोगों ने दोनों ने ही उनसे डगंडा नहीं बांधा था। तो वो उन्होंने कहा था कि बेटा बीमार थी, उनको फालिज हो गया था, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे मुखाग्नि ये करेगी रीता, इसमें अच्छा। तुम लोग कोताही मत बरतना। ये अजीब बात है कि तुम लोग तो हमारे कोख से पैदा हुए हो, ये मेरी उपज से पैदा हुई है। बहुत प्यार करती थी, और ये बात सच है कि वो जली नहीं जब तक मैं गई, क्योंकि हमारे यहाँ

0: की ख्याल फिर अच्छी तरह से सीखे। थोड़ी बहुत सीख चुकी थी मैं, तो विशारद वगैरह कर लेते, विशारद शायद करके कोई गवैये नहीं बन सकता है, उनको भी पता था। तो हमको दिलीप चंद्र बेदी के पास ले गए, लेकिन बहुत अच्छे जरूर गवैये होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। तो क्योंकि हम ब्याह सीख चुके थे गोपेश्वर जी से, उन्होंने ब्याह गाया कैसे सुख सोए नींदरिया, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो हमने कहा कि नहीं अम्मा इसे नहीं सीखना हमें, तो बहुत नाराज हुई, मुझे नहीं सीखना, आप भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं सीखेंगे, आप तो गाती इतना अच्छा, ख्याल बहुत अच्छा गाती थी, टप्पा तो बहुत ही अच्छा गाती थी। फिर उनकी तालीम, उन्होंने मेरी तालीम जो हुई वो सारंगी के साथ हुई, मेरी पूरी टप्पे की जो तालीम, पहले जमाने में लोग पहले टप्पे से शुरू करते थे फिर ठुमरी गाते थे, तो मैंने तो अपने उस्ताद को सारी रात एक ठुमरी एक बोल आओ आओ नगरिया हमार गा के सुना है, मैंने वो इतना गाती थी, और वो सारंगी के साथ। अभी बहुत मशहूर हो गए, टॉप ग्रेड हैं, सारे अवार्ड्स हिंदुस्तान के मिल चुके हैं, उस्ताद साबरी खान साहब, उन्होंने उनको भी बुलाते थे वो, और हमारी घर की तालीम के लिए। फिर उनमें महान बात थी कि वो जब सचमुच उन्होंने कहा कि मैं तो इसको एक शर्त से उसको मैं गाऊंगी, कहीं प्रोग्राम था कि मेरी बेटी आधा घंटा गाएगी, तो असल में ये गंडा बदने का जो ये आपने डब्बा पकड़ा दिया और मिठाई पकड़ा दिया और अपने धागा बांध दिया, वो नहीं है। उस्ताद आपको गंडा बांधेंगे गुणीजनों के सामने तो आपको गाना पड़ेगा, चाहे सारे गा मई हो। उसके बाद जब वो सोचते हैं कि वो गाना आपने थोड़ा बहुत सीख लिया, तो वही बाकी 5, 7, 11 गुणीजन आएंगे, उनको बाकायदा नारियल के वो पान का पत्ता सुपारी और कुछ नजर करके आप फिर बैठे, तब ये इम्तिहान किसका है, गुरु का, कि आप सुन लीजिए। इसको कहते हैं सचमुच गंडा बन शागिर्दी। तो उन्होंने किया, बड़े बड़े लोगों को वहाँ, उस वक्त प्राणनाथ जी थे, दिलीप चंद्र बेदी जी थे, यूनुस हुसैन खां साहब थे, उस जमाने में यूनुस हुसैन खां साहब के वालिद भी जिंदा थे, विलायत हुसैन खां साहब, ये सब के सामने उन्होंने हमें बिठा के शंकर लाल प्रोग्राम में, उससे पहले ग्रीन रूम में सबको नजर करवाया और सबसे इजाजत दिलवाया और हमसे गवाया, फिर जाके हम स्टेज में गए। तो ऐसे सच्चे मन के इतने सच्चे उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल
1: है। दीदी एक बात और उठती है, ये तो सही बात है, ऐसे सच्चे उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक आम धारणा ये भी है कि ऐसे गुरुओं से सीखना भी बड़ा मुश्किल होता है और लोहे के चने चबाने पड़ते हैं ऐसे लोगों से सीखने के लिए।
0: गुरु शिष्या परंपरा में चना और गुड़ दिया जाता है, लोहे के चने,
1: जी जी,
0: इतना आसान तो नहीं है।
1: और आपने इतने महान लोगों से सीखा, तो कैसे आपने इतने लोगों को साधा, आपके अंदर क्या ऐसा गुण रहा कि सारे गुरु आपसे प्रभावित हुए?
0: ये था, मैं मानती हूँ कि अगर आप रास्ते में चलते हुए किसी को गुरु मान लेते हैं तो बात नहीं बनती, गुरु भी चुना जाता है। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी थी, उन लोगों ने मुझे चुना, लेकिन ऐसे गुरु जो उनके 32 गुण होते हैं, उनकी खूबसूरत आंखें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए, पैर साफ होनी चाहिए जिसको आप छुएंगे, भाई 32 गुण हैं गुरु के, लेकिन शिष्या की सिर्फ 2 ही गुण चाहिए, वो है फेथ, विश्वास और सरेंडर, आत्मसमर्पण।
1: क्या बात है।
0: तो ये मैंने बचपन में ही अपने पिताजी से सीखा था, क्योंकि वो बहुत महान लेखक थे और स्वाधीनता सेनानी भी थे, उन्होंने समझाया था बेटा तुम अगर ये, वो तो बहुत हैरान हो गए कि भाई ये कहाँ गाना सीखने लगी, तो बहुत चाहती, हालांकि मैंने कहा बाबा आप सेकंड तो नहीं आए, हम ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हिस्ट्री ऑनर्स लेके, सेकंड कभी नहीं है ईश्वर की कृपा से, और ऐसा कोई इंटरव्यू में नहीं गई जहाँ मैं सिलेक्ट नहीं हुई
1: जी।
0: तो बाबा ने कहा कि मेरी तो बोलती बंद, और तुमने करना भी तो जाके तुम, अरे हमने तो बालानंद स्वामी से अपना शिष्यत्व लिया। मेरी दादी जो थी वो बाद में सन्यासी हो गई थी, और वो थी वो

0: सीधा शारदा माँ यानी रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी शारदा माँ की शिष्या थी। वो बहुत बहुत ही उच्च कोटि की खुद साधिका थी। बनारस में केदार घाट में दो जोड़ा शिव मंदिर है, वो मेरी दादी की बनाई हुई, और एक बंगाली माई की घाट है, वो भी मेरी दादी की, वो आनंदमयी माँ जी की नहीं है, मेरी दादी ने बनाया था। क्योंकि मेरे जो दादा थे वो पहले काले पोस्ट मास्टर जनरल थे। अच्छा। उनका रेंगून से श्रीलंका से अफगानिस्तान इतना बड़ा डोमेन था। तो लेकिन सुनते हैं कि मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी, सुनते हैं, मेरे पिताजी कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ हम लोगों के लिए नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी, तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो, उसमें अपना कॉन्सेंट्रेट करो। उसके बाद सिद्धेश्वरी जी के अप्रूवल से मैं कुछ दिन यूनुस हुसैन खान साहब से सीखी। वो मेरे लिए बहुत अच्छा हासिल था कि वो इतने पक्के थे राग में। अब ये तो राग जो सीखे उनसे, ये आगरा अथरौली घराने के लोग जो उनके पास बंदिश खुद बनाते हैं, चाहे किसी घराने के गाने वाले हों, लेकिन गाते हैं बंदिश अमूमन आगरा अथरौली के, ज्यादा से ज्यादा उनकी बनाई हुई बंदिशें। बंदिश बनाना इतना आसान चीज नहीं, जब तक ना आप प्रकांड विद्वान हो आप बंदिश नहीं बना सकते। तो यूनुस हुसैन खान साहब बहुत अच्छा बंदिश बनाते थे, उनसे कुछ दिन सीखा मैंने। फिर उसके बाद वो चले गए विश्व भारती में पढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं पंडित मणि प्रसाद जी से सीखना शुरू किया। लेकिन उससे पहले क्या था, एक दिन मैं अम्मा के साथ गाने गई थी लखनऊ एकेडमी में। उस एकेडमी में अम्मा गा रही थी, मैं पीछे गा रही थी। ये राजन साजन जी के पिताजी
1: हनुमान प्रसाद जी
0: तबले पे सारंगी पे थे, और क्या कहने वो थरकवा साहब तबले पे, ऐसा बहुत आजकल लोग अच्छा बजा रहे हैं, बहुत बधाई है उनको, लेकिन वो बात नहीं, जो थिरकवा तो थिरकवा ही रहे, ऐसे किसी ने ना बजाया, ना बजाया था, ना बजाएगा। क्या अद्भुत उनका मुलायम मक्खन की तरह आपका सम आता है। सिद्धेश्वरी जी बहुत सख्त थी कि एक सम नहीं निकलेगा, तो कहा तू ख्याली बल्ले हो, चल जाते अरे समी ना ही आता, इसका मतलब ये कोई गाना हो, वो का बेकूफ है जो ताल दे थे, ताल तो राजा हो भाई। तो हम अभी भी नहीं बैठ सकते, जैसे अभी आपके महफिल में बैठे तो हमारे भाई साहब अपने बाएं तरफ बैठे, तो ये मुमकिन ही नहीं कि तबला हमारे बाएं में बैठे, उसका जगह दाहिने में ही है, वो सबसे ऊंची चीज है। वो कहती थी, और बात मैं मानती हूँ, कि बेसुरा खप जाएगा,
1: बेताला नहीं।
0: कि ताली तो पूरी ब्रह्मांड ताल से ही चल रहा है, तो हम लोग को तो मानना ही पड़ेगा। इसके बाद वो उनमें एक ये सब तमाम चीजें वो सिखाती थी, उनका पूरा स्वभाव बिल्कुल गाय जैसा था। फिर उसके बाद मैं जब गाने गई तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मुझे छोड़ दिया
1: जी।
0: वो पुरिया धानिश्री में ख्याल गई, वो मुझे छोड़ दिया, उनका तुम संभालो, विलंबित के बाद द्रुत ख्याल कर, हाँ चलो अब गाते हैं, क्योंकि हम लोग ठुमरी शुरू हुए हैं।

0: ये उन्होंने उस दिन गाया था। उसके 5 दिन बाद किसी मुख्तलिफ निजी कारण के लिए मैं कुछ दिन के लिए गाना छोड़ दिया था
1: जी।
0: मुझे अचानक लगा कि मुझे गाना नहीं गाना, बिल्कुल गाना ही नहीं, तो अपना ही कोई मसला था।

0: तो गाना छोड़ रखा था कोई 6 महीने तक, चुपचाप घर में बैठी रहती थी और मैं खुश थी, जो भी कर रही थी, कुछ लिख रही थी, कुछ पढ़ रही थी। अचानक मुझे लगा कि मुझे ये काम नहीं, मैं काय को इसमें झमेला कर रही हूँ, हो गया। तो वो जो गाना गाया था हमने, उस महफिल में शायद बेगम साहब आई हुई थी,
1: बेगम अख्तर जी,
0: जी हाँ जी। तो यहाँ आई, वो यहाँ आके ठहरी हुई थी निरुला में, तो एकेडमी की तरफ से उनको मधु करने के लिए लोग गए थे, तो हम भी साथ हो ली, बेगम साहब को देख लेंगे। अब बेगम अख्तर की मुरीद कौन नहीं है, सब पसंद करते हैं उनकी आवाज, उनके गाना, तो हम तो बचपन से छोटे थे तब से सुन रहे हैं। तो हम चले गए, तो अचानक वो दरवाजा खोलते ही बोली, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओ मिया देखो दरिया आवा, इस लड़की के बारे में बोलत रही। तो हाँ हो गया, बैठ बैठो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैं अपना नाम बोला। क्या करती हो, नाचती हो? जी नहीं। गाना गाती हो? जी नहीं। क्या करती हो तुम? मैं खाना पकाती हूँ। तो बोला अच्छा, अरे माशाल्लाह खाना पका लेती हो, तो गा भी लोगी, जो खाना नहीं पका सकता वो गा नहीं सकता बेटा, तो तुम गाओगी? मैंने कहा जी नहीं, मैं गाने का कोई इरादा नहीं, और मैं गा भी नहीं सकती हूँ, कभी गाई नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो उस जमाने में मैं ख्याल सीखी हुई थी और धमाके का रियाज था, और हमें सिद्धेश्वरी जी ठुमरी गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी, तो मैं अपने को बहुत बड़ी समझने लगी। मैंने कहा कि आप ये गजलें ही सब गाती रहती हैं, तब ठुमरी पहले गाती थी, आजकल छोड़ दिया आपने। हंसने लगी, भाई गजल से जब काम चलता है, हम बेवकूफ हैं, बिला वजह मेहनत करे ठुमरी गाने के लिए? ठुमरी को ऐसा गाया जाता है, बहुत मुश्किल काम है। तो अब देखो ना, अब मियाँ वो कौन सा, उनके शौहर साथ थे, वो कौन सा था? तो उन्होंने कहा कि छारी का। हाँ, अब देखो ये छारी गई, काली घटा की फरमाइश आती रही, अब मुझे भूल ही गई हूँ। तो मैंने कहा वो भूल गई है बेचारी,
1: मैं बता देती
0: हूँ, मैं बता देती हूँ अल्फाज सुन रही कोयल भबरी तू क्यों मल्लार गाए। तो उन्होंने कहा अरे भाई अल्फाज तो कोई बता देता, लेकिन बात ये कि सुर भूल गई हूँ। तो मैंने अच्छा रही का

0: सुना दिया मैंने
1: जी
0: कि भाई बेगम अख्तर भूल गई अपना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बेवकूफ की तरह वो भी कैसे हमको जाल में फंसा ली। बोले तुम तो कह रही थी नहीं गाती हो, तुम तो ठीक गा रही हो, तो तुम हमारे साथ गाओगी तो हम गाएंगे उस प्रोग्राम में। अब वो प्रोग्राम बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जितने भी दुनिया के जितने गालिब के जो उर्दू दा हैं, अरबी फारसी सब लिखे हुए, वो सब बड़े बड़े पंडित आए हुए थे और जाकिर हुसैन साहब उसमें बैठे थे
1: जी,
0: तशरीफ थे रखे हुए थे। और इंदिरा गांधी जी तब मिनिस्टर नहीं थी, तो वो आई हुई, वो भी आई हुई थी। तो इतने में क्या हुआ कि हमें, मैं गई बेगम साहब गा रही सिरे सुनने के लिए, अब की बार तो और भी मर्जी है सुनने के सामने से, तो उन्हें बुला लिया चपरासी आके, बोला बेगम साहब को बुला रहे, तो मैं चली गई। जब चली गई तो उन्होंने कहा कि अरे अरे तुम भी पीली साड़ी में हो, मैं भी पीली से देखा मुन्ने इसी बच्चे के लिए, मुन्ने खान साहब उसके साथ बजाते थे, इसी बच्चे के लिए मैं कह रही थी। बोले माशाल्लाह, तो कहा बैठो बैठो बैठो जल्दी से तानपुरा मिलाओ। तो मैंने कहा मैं तो तानपुरा नहीं मिलाना जानती हूँ, मैं तो गाती नहीं हूँ। बोला अच्छा चलो हम मिला देते, बैठो चलो गाओ। तो मैंने बहुत हाथ जोड़ के कहा मैं तो गाती नहीं हूँ, आप जैसी महान कलाकार मैं आपके पीछे कैसे गा दूँ, मैं तो उर्दू जुबान भी नहीं जानती हूँ, तो आप इस बार माफ करिए कभी सीख लेंगे तो गाएंगे। बोला हाँ सही कह रही हो तुम, इस तरह से मुंह में एक शिकन नहीं, क्या कहनी इस औरत की, वो बिल्कुल गौ जैसा।

0: ये बिल्कुल हिरनी थी, ऐसा खूबसूरत उनकी आंखें, बोलने अंदाज, नफासत। तुमने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, बशर्त तो मेरी यही थी कि तुम गाओगी पीछे। अब तुम नहीं गा रही हो, कोई बात नहीं, ये तो खान साहब लोग सारी शाम गा लेंगे। उस प्रोग्राम में जितने बड़े बड़े ख्यालिया थे सब एक एक गजल गाना, अच्छा। और आए भी थे, सब गाए थे, जितने भी बड़े बड़े लोग। और इंटरवल के बाद इनका था, तो उठी फट से, अपना हारमोनियम बंद, कोलैप्सिबल था हारमोनियम, बंद करी, खड़ी हो गई। हारमोनियम, अरे इशारा नहीं समझते हो मियाँ, तबला बंद करो, नहीं गा रहे, चलो निकल रहे। तो खुद एक चपरासी था, उससे हारमोनियम उठवाया और धर धर धर धर धर धर, उस जमाने सप्रू हाउस दिल्ली में हुआ करता
1: जी।
0: और हमारी बदकिस्मती, वहाँ एक टैक्सी भी रहा था, खड़ा था, किसी को लेके आया होगा, उसमें जाके बैठ गई। तो फिर कहा कि अरे मियाँ इधर सुनो, इधर उनको सेक्रेटरी साहब को कह देना कि मैं जा रही हूँ इन लोगों को गवा ले। तो तुम समझ में तो बहुत गड़बड़ होगी। तो मैंने उसके पैर पकड़ के कहा पाइए मैं आपके साथ दूंगी। बैठ के उन्होंने तानपुरा मिला लिया, स्टेज पे बैठते हर लाइन गाए और पीछे मुड़ के देखे ताकि मैं गाऊं। तो मैं उनकी तरफ देखूं ही ना, दूसरी तरफ देखूं, तानपुरा बजा रही हूं लेकिन दूसरी तरफ देखूं। तो उन्होंने जल्दी से रोका और कहा कि हुसैन साहब पहचान गए होंगे, थोड़ी सी वो तो बहुत खूबसूरत थी, मेरी भी कहीं झलक आती होगी उन जैसा। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे इस बच्ची को देख के समझ गए हैं, आप मेरी दुख्तर है, तो क्या गाती है माशाल्लाह, आप सुनेंगे तो आपका जी बाग बाग हो जाएगा, और जरा सुनिए आप, कोयल जैसा कुहकती है, अभी आपको सुनवा रहे हैं हम। तो उन्होंने शुरू किया गाना,

और वो पीछे देखती रही, मैं गाई नहीं, बहुत एक तो मुश्किल गजल पर हमने सुना भी नहीं था, तो हमारी तरफ मुंह करके, मैंने जिंदगी में उतनी खराब गाली कभी किसी के लिए नहीं सुनी, दिया की तो तेरी उस्ताद गा सकती हमारे पीछे बैठ के, ये तू गाएगी। ओहो, वो जो सुना मेरी तो सर से पैर तक जैसे बिजली गिर गई कड़ाके की, इतना गुस्सा आया। लेकिन करें क्या, आप बेगम अख्तर की आवाज, उसके पूछे आप ही नहीं बोल सकते हैं। कैसे बदला ले, नहीं ले सकते, बेवकूफी हमारी भी थी। तो बहुत देर तक बस सुनती रही, आ ओ कहीं आए, और उस वक्त गजल में रुझान भी नहीं थी, मैं इस गजल को पढ़ी भी नहीं थी, तो कहीं आ ओ आए तो बात चले।

तो हमने बयां ये समझ लिया, पीछे बैठने से कुछ समझ में नहीं आती, तो बयां को जो मैंने पकड़ा, तब तान तैयार भी होते धर्राटे के तानवान गा के मैंने पूरा उनका प्रोग्राम बिगाड़ने की कोशिश की, और भी जम गया, इतना जम गया कि लोग ताली बजाने लगे। उन्होंने बना ही दिया था कि कोयल जैसा कोह थी, मैं क्या कहूंगी, वो मैं तो बिगाड़ रही थी। और हर बार वो कैसे अलग अलग शेर को, आरी बाबा वो सचमुच महान पंडित थी। वो खत्म करने के बाद उन्होंने कहा कि कैसे गाई, मैंने कहा कि मैं अपने पूरे खानदान को लानत भेजती हूँ कि आपको कभी सुना भी था, आपने कभी किसी सीखा भी है, मेरे उस्ताद के बारे में आपने कैसे बोल दिया। बहुत मैं नाराज थी, तो उन्होंने हमको जबरदस्ती अपने सीने से लगा लिया, कहा कि बेटा कब से मैं एक शागिर्द देख रही थी, तुम बेगम अख्तर के साथ लड़ गई अपने उस्ताद को बचाने के लिए, मेरे से सीखोगी तो पता नहीं मेरे लिए क्या करूंगी। वही वजह है कि पिछले 37 साल से

0: उनकी बरसी में करती आ रही।
1: एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, आपने ध्रुपद सीखा, ख्याल सीखा, ठुमरी दादरा सीखा, गजल सीखा, लोक संगीत सीखा। हमारे यहाँ संगीत में माना जाता है कि अलग अलग विधाओं के लिए अलग अलग तरह की आवाज होती है, आवाज को अलग अलग ढंग से तैयार करना पड़ता है
0: जी।
1: इसके विषय में थोड़ा सा बताएं, आपने अपनी आवाज को कैसे
0: साधा? लगता कि आवाज तय, मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन आवाज तैयार करने की तरीका एक ही है
1: जी।
0: वो एक खास रियाज है जो कि प्रोफेशनल लोग अपने बच्चे को ही सिखाते हैं।
1: नहीं, हम ध्रुपद में जिस ढंग से आवाज लगाते हैं,
0: चाहे किसी का भी, सब की एक ही है, वो है कि खरज की तैयारी
1: जी।
0: और वो गोल आवाज बनी है, सबसे पहली बात तो गोल आवाज, उसके लिए जिसको हम लोग अध्यात्म योग में कहते हैं कि प्राणायाम, सही माने में प्राणायाम हो तो हो जाएगा
1: जी।
0: आवाज, आवाज फेंकने का अंदाज सभी एक है, लेकिन काकू भेद अलग है
1: जी।
0: यानी वही राग है, चाहे उसमें आप ध्रुपद गाइए या ख्याल गाइए या ठुमरी गाइए। ये हम, मेरी जो पीएचडी है, शोध है, उसमें मैंने प्रमाण कर दिया है कि सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय संगीत हमारे देश में ठुमरी ही रहा, नाम कुछ और रहा, वो बदल गया वाजिद अली खान साहब के सब, लेकिन ये ठुमरी मतलब ठुमकना नहीं है
1: जी।
0: ठुमरी का मतलब है स्तंभ, स नहीं आता था इसलिए ठम हुआ, ठम के बाद वो जब वाजिद अली खान के पास आते आते री बन गया, स्तंभ की री मतलब मेरी
1: जी,
0: इस तरह से
1: जी।
0: री एक प्रकार की भाषा है जो
1: अपनेपन के लिए हम लोग प्रयोग में करते हैं,
0: तो ये ठुमरी बन गया। लेकिन सबसे पुरानी गायन प्रथा ठुमरी है। अब मेरी दुर्भाग्य में कहूंगी कि भातखंडे जी ने जितने भी छोटा ख्याल लिखा वो ठुमरी से उठाकर डाल दिया। हर राग में ठुमरी पाई जाती है। अब आप सोच लीजिए ना, आजकल प्रचलित जो ठुमरी है वो काफी भैरवी, खमाज, ये सब तो थाट राग है, तो ये हो ही नहीं सकता है कि। लेकिन बात क्या है, जैसे अम्मा कहती थी कि ये कलम करना बहुत मुश्किल बात है, अगर ना आप पूरी रागदारी समझते हैं तो एक दूसरे राग को लाके इसमें कभी कभी कलम करते हैं। ठुमरी गाना रागमाली का गाना नहीं है। अभी जो ठुमरी का प्रचलन हुआ ये नहीं है, ये पूरी जिंदगी के अनुभव ठुमरी से निकलती थी और वो हाइकू होता था एक लाइन का। ये अंतरा अंतरा बहुत बाद में 7वीं सदी में शुरू हुआ कि एक अंतरा गाना है, क्योंकि ज्यादा देर तक रहना है और लोग महफिल लंबी हो गई, अनुष्ठान मंदिर में हो गया, तो ध्रुपद के साथ इसका भी एक अस्थाई जोड़ना, अंतरा जोड़ना हो गया लाजमी। पहले वो जापान में अभी है वो कविता लिखने की, एक शब्द, कौन गली गयो शाम, बस, या सांझ भई घर आ जा, या जाग परी मैं तो पिया के जगाए, वो काफी है सारी रात बरतने के लिए। वो कैसे जागा, क्यों नहीं जागा, कौन है पिया, क्यों जगाया, इसके लिए कितनी चीजें आध्यात्मिक और दैनंदिन जीवन की चीजें निकलती है। तो ये हाइकू का साहित्य और इस तरह की राग प्रणाली में गाने की, क्योंकि देखिए हम जो अगर शास्त्रीयता देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मूर्छना
1: जी,
0: अलग सुर को सुर में लेके आप बदलते हैं, वो सिर्फ ठुमरी में पाई जाती है। जब तिरोभाव भी नहीं हुआ तो आविर्भाव की सवाल कहाँ है, किसी और विधा में तिरोभाव होता ही नहीं, आप राग से निकलते नहीं तो फिर आविर्भाव कैसे होगा। ये तमाम टर्मिनोलॉजी जो है वो सब ठुमरी में पाया जाता है। ये मध्यम ग्राम, पहले देखिए आप जितने भी साज देखेंगे दुनिया में वो सब मध्यम में ट्यून होता, पहला नोट जब मध्यम में है, आप समझे ना। इस तरह से ठुमरी की जो अंदाज थी वो पूरी चीज बदल गई, सा को टॉनिक मानने से, टॉनिक बदलने से बदल जाता है, इसी तरह से आपकी काकू भेद भी बदल जाती। तो मेरी खुशकिस्मती थी, हालांकि मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे कोई हक नहीं बोलने का क्योंकि लीगल कुछ नहीं हुआ, लेकिन अम्मी एक बार कटक में गए थे, वहाँ अमीर खान साहब भी गए थे, उनकी बड़ी लड़ाई थी उस जमाने में, मैंने इन लोगों की दोस्ती करा दी, तो उन्होंने कहा कि खान साहब एक काम करा दो, हमारी इस बच्ची की आवाज़ ठीक करा दो। तो 20 दिन खान साहब बैठे रहे, सुबह शाम अम्मी खाना पकाती रही और बैठी ए, ए, ए, ए, ए,

0: को गाना नहीं है, इस बच्ची का तो निकला ही नहीं, आप आगे क्यों चल रहे, फिर पहले इसको करवाइए, बैठ के डंडा लिए उनसे सिखवाते थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि थोड़ी सी आवाज गोल करने का रास्ता उन्होंने बता दिया था।
1: आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक बात जानना चाह रहा हूं कि जब ये कहा जाता है कि ठुमरी को कई जगह छोटी चीज कहा जाता है, उपशास्त्रीय संगीत कहा जाता है, कैसा लगता है आपको? या गजल गायकी को भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है?
0: ठुमरी गाना बहुत मुश्किल है, आप जो जो सीख के आए हैं, रियाज करते आए हैं, उसको छोड़ के आगे जाना, तो दुनिया में जो भी अच्छे काम हुए पुराने रीति रिवाज को छोड़ के आगे बढ़ना ही जिंदगी कहा जाता है। तो ये कलम करना और उसमें रस सृष्टि करना, ठुमरी में सिर्फ राग गाना, राग तो गाना ही, लय में भी गाना है, सुर में भी गाना है, लेकिन ध्येय सिर्फ राग गाना नहीं है, ध्येय है अमूर्त को मूर्त देना।
1: बिल्कुल सही।
0: ये मूर्त अगर आपके गाने से नहीं पैदा हुआ, चाहे सुर में हो, ताल में हो और ठीक हो, कोई मतलब नहीं
1: जी।
0: इसीलिए जहां पर भी आप जाते हैं, लोग बेसब्री से सब उस्ताद जी का, बड़े बड़े उस्तादों के आखिरी आइटम के लिए इंतजार करते हैं, वो है ठुमरी। अब ठुमरी के बदले में अब गजल आ गया है तो लग गजल भी सुनते हैं। ये अम्मी एक बार कह गई थी, किसी ने कहा था ना, मैं फला जगह गा रही हूँ, आप क्या नाम बोलो, नहीं नहीं मैं छोटी चीज से नहीं गाता, बहुत बड़े खास किसी ने कहा था, तो अम्मी ने ये कहा था कि देखना बेटा वो जमाना आएगा जब जितने बड़े बड़े खानदानी गवैये हैं सबके बच्चे सब गजल गाएंगे, और बात सच निकली।
1: बात सही है।
0: अब जितने भी बड़े बड़े खानदान हैं, चाहे वो जयपुर हो, पटियाला हो, ग्वालियर हो, या कोई भी अतरौली हो या जयपुर, सबके बच्चे आजकल गजल ही गा रहे।
1: आपने बेगम अख्तर जी को अभिनीत किया है मंच पर
0: जी,
1: और आपने उनकी याद में एक एकेडमी भी बनाई है
0: जी, है बाग
1: जी,
0: बेगम अख्तर एकेडमी ऑफ गजल
1: जी।
0: ये सोच के कि किसी भी बाग में मुख्तलिफ रंग की और खुशबू के फूल खिलते हैं
1: जी,
0: वो इस उम्मीद से। इसके हालांकि मैंने अकेले नहीं, मेरे साथ उस वक्त अब्बा थे, यानी कैफी आजमी साहब थे, और अली सरदार जाफरी साहब थे, अमीर गजलबाज थे, ये तमाम लोग थे। क्योंकि गजल आप क्लासिकल तो गा ले सकते हैं, गजल गाना जब तक आपकी शायरी की समझ ना हो, तो चाहे बड़े बड़े गजल गवैये अगर आप जान लें इस गजल गाने की तरकीब, तो वो अब अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि कहाँ पर सदका पड़ता है वो समझ में नहीं आती लोगों को। तो ये वजह है कि एक जमाना था, एक दौर था, जो कि हम लोग देवनागरी और रोमन में वो इंतखाब करते थे कैफी साहब, वो हम छपवा के अच्छे अच्छे बड़े बड़े गवैयों को भेजा, ताकि वो सही तलफ्फुज और सही शेरों का इस्तेमाल करें। कुछ गाने आप तो गा ही नहीं सकते, आप गजल क्यों गाते हैं जहाँ आप सुर का एक आयाम दे सकते हैं, अल्फाज में एक जो अल्फाज हैं अपने में मुकम्मल में, उसमें गाने की ज़रूरत ही नहीं। गाना आप तभी उन्हीं इंतखाब करते हैं जिसमें मौसकी से तर्जुमा करने का इम्कानात हो,
1: बिल्कुल
0: तभी आप उसे लेना चाहिए। तो ये समझ अरसा, एक तो मेरे उस्ताद की शौहर इश्ताक अहमद अब्बासी जो नवाब थे कांकोली के, बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत ज़हीन थे, और शेर व शायरी का उनका बहुत शौक था। यही वजह थी कि हमें ये, मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 9 साल इन लोगों के साथ रही, और सवेरे जब अम्मी घूमने सैर करने निकलती थी तो अब्बा हमें बिठा लेते थे और सुनाते थे मीर तकी मीर, और फिर जामी की गजलें फारसी, और ये तमाम चीज़ें हम उनसे सुनते थे। तो ये गजल पढ़ने का और किस तरह से उसका मीटर, बेगम साहब ने हमें तर्जे बनाने की भी तालीम दी थी। एक ज़माना था जब वो नहीं गा रही थी, कोई वजह जाती है, वो बुजुर्गों को लेके कुछ खटपट हुई थी, तो बेगम साहब इसको शकील बदायूं को गाना छोड़ दिया, जिनको भी गाना वो सोना हो गया। अब तो लोग जदीद शायरी वगैरह कहते हैं जिगर को सबसे पहले बेगम अख्तर साहब ने गाया, कोई कह दे गुलशन गुलशन, तो वो उनसे अब उनको गाना ही छोड़ दिया। फिर वो शमीम जयपुरी गाने लगी, लेकिन सब शायर उनको, चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ हो, अहमद फराज हो, या जो भी हो उस जमाने के,

0: अपना दीवान, कुछ भी दो गजलें भी लिखे तो उनको भेज देते थे कि आप अगर आपको इच्छा तो आप गा लीजिए साथ कॉपीराइट देके।
1: जी
0: तो इस तरह से मेरे पास भी बहुत शकील साहब भेजते थे, दो चार गजलें मेरे पास थी। तो उस वक्त हफीज अहमद खान साहब यहाँ के थे हेड ऑफ उर्दू सर्विस, तो नेशनल प्रोग्राम में वो आ गए, उन्होंने कहा तो मैंने एक दो शकील की चीजें गा दी और तर्ज हमने खुद बनाया, तो हमने उन्हें गा दी। और अम्मी कहाँ सुनेंगी, मैं तो दिल्ली में गई हूँ, वो तो लखनऊ में रहती हैं, तो भूल भी गई कब ब्रॉडकास्टिंग, दो तीन महीने पहले हो जाता है रिकॉर्डिंग। अचानक एक दिन अम्मी बोल रही, बेटा जरा रेडियो लगा ना ए पे, ए दिल्ली लगाओ ए। तो मुझे अचानक ख्याल है कहीं मेरा सनिचर है नेशनल प्रोग्राम तो नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें मैंने ये गाया, अम्मी ने मना कर रखा था। तो मैं तो बहुत, यानी मैंने सोचा बस मेरी तो शागिर्दी गई खत्म और पता नहीं क्या सजा मिलेगी मुझे। तो ये बात सच, हालांकि हमें ये कहना नहीं चाहिए, लीगली तो ये कयाम साहब का तर्ज है, बाद में रिकॉर्ड। हाँ।

0: और वो बजने लगा जू, पहले तो एक छोटा एक ख्याल का पीस था, उसके बाद ठुमरी था और ये गजल गाई थी। खुश हो गया, अरे वाह वाह वाह, अब मैं इसको, ये तू मुझे दे दे, ये मैं गाऊंगी। और उन्होंने गाया भी, हालांकि खयाम साहब ने उसमें चार चांद लगाए। ये तो मैंने एक्चुअली, मैं चोरी भी बता देती हूँ, एक रविंद्र संगीत था जिसमें अजीजे रोजो नीजा बिल्कुल यही तर्ज है, तो उसको उठा के मैंने इसमें बिल्कुल फिट बैठता है वो गाया था।
1: जी जी।
0: तो और वो इतनी खुश हुई, मैंने कहा अम्मी मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने ये गा दिया, आप नहीं गाते। तो मैं कभी, सबसे बड़ी बात हो गई थी बेटा, कभी भी नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी नकल करो, इससे एक आर्टिफिशियल नकली हीरे के नेकलेस से तो अच्छा महज मूंगे का एक छड़ी माला बन जाओ, वो ठीक,
1: अपना रास्ता खुद बनाओ,
0: अपना रास्ता खुद।
1: एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है
0: जी,
1: आपने इतने सारे काम किए और इतनी सफलता के साथ, इसका रहस्य क्या है, इसके पीछे कौन सा मंत्र है?
0: इसका रहस्य मेरी शायद गुरु भक्ति होगी, गुरुओं की बहुत आशीर्वाद,
1: आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी,
0: दृढ़ इच्छा तो अभी भी है। देखिए अभी भी जाके मैं 10 दिन में एक प्रोडक्शन करके आ गई एफटीआई, इच्छा होती काम करने की। और मैं मानती हूँ कि एक इंसान का अभिव्यक्ति एक विधा से काफी नहीं है।
1: जी विदुषी रीता गांगुली जी, आज आप हमारी महफिल में आई, आपने इस महफिल को गरिमा प्रदान किया। आज न जाने क्यों घड़ी की सुई भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, समय समाप्त होने वाला है। इस कार्यक्रम में हमारे साथी कलाकार थे तबले पर श्री प्रसून चटर्जी और हारमोनियम पर श्री जमीर अहमद खान।
0: मंजिल से उसी तरह से शिद्दत से इश्क करना जरूरी है।
1: क्या बात है,
0: मंजिल से पहुंचना, ऐ काफिले वालों सच कहना, बेवजह तो हम बदनाम नहीं, मंजिल की तमन्ना आम सही, मंजिल की तमन्ना आम सही, मंजिल से मोहब्बत आम नहीं।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप विदुषी रीता गांगुली से विजय शंकर मिश्रा की बातचीत सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
3: You just heard an interview with Vidushi Rita Ganguly. Talking to her was Vijay Shankar Mishra. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदुषी सविता देवी का उपशास्त्रीय गायन. लीजिए सुनिए ठुमरी. बोल हैं सावन आए तुम नहीं आए. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग उपशास्त्रीय वोकल रिसाइटल बाय सविता देवी. लिसन ठुमरी. बोल सावन आए तुम नहीं आए.

अभी आप सुन रहे थे विदुषी सविता देवी से ठुमरी। आइए सुने एक और ठुमरी। बोल हैं सैया जुल्म करे, दैट वॉज ठुमरी। लिसन वन मोर ठुमरी बाई सविता देवी। बोल सैया जुल्म करे।

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: अभी आप सुन रहे थे विदुषी सविता देवी से ठुमरी, तबले संगत कर रहे थे उस्ताद हिदायत खान, सारंगी पर अनंत कुंटे और हारमोनियम पर थे अरविंद चाफलकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है विदुषी निर्मला देवी का उपशास्त्रीय गायन। लीजिए सुनिए गजल, बोल हैं मेरे जख्म दिल को न छेड़िए।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी निर्मला देवी से गजल। अब सुनिए ठुमरी, बोहें जाने ना दूंगी। दैट वॉज गजल। नाउ लिसन ठुमरी बाई विदुषी निर्मला देवी।

0: ये थी ठुमरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विदुषी निर्मला देवी का गायन। तबले पर संगत कर रहे थे श्रीधर पाध्ये और सारंगी पर थे अनंत कुंटे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वाज ठुमरी। विद दैट वी कंक्लूड उपशास्त्रीय वोकल रिसाइटल विदुषी निर्मला देवी, अकंपनीड ऑन तबला श्रीधर पाध्ये एंड ऑन सारंगी अनंत कुंटे। दिस वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ AIR मुंबई।
1: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

ಪಾಪ ಜಮನ ಜನ ಬಾ ಜನ ಮುಗ ದೂರ ಸಹಿತ ಬಾ ಜುಗ ಬಾರಣ ಬಣಿ ಬೇಡ ಪಾಪ ಜಮನ ಜನ ಬಾ

Oh.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ठुमरी और दादरा. कलाकार हैं अवंती भट्टाचार्य. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी. अवंती भट्टाचार्य अपने गायन का आरंभ खमास ठुमरी से कर रही हैं.

0: सुनते हैं ये खमास ठुमरी, कलाकार अवंती भट्टाचार्य।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल्स फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल। Listen to a Khamaj Thumri followed by a Bhairabi Dadra. Our artist this evening is Avanti Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to Khamaj Thumri, our artist Avanti Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये खमास ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी अवंती भट्टाचार्य। अवंती भट्टाचार्य अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रही हैं भैरवी दादरा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये भैरवी दादरा, कलाकार अवंती भट्टाचार्य।
1: यू वर लिसनिंग टू खमाज ठुमरी। Our artist was Avanti Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy and on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We now present Bhairavi Dadra. Our artist is Avanti Bhattacharya. Accompanying her is Tarun Roy on the tabla and Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to Bhairabi Dadra, our artist, Avanti Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप भैरवी दादरा सुन रहे थे। आज की कलाकार थी अवंती भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विष्णु ताल और धमार ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं पंडित सोहन लाल मिश्र। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। पंडित सोहन लाल मिश्र अपने तबला वादन का आरंभ विष्णु ताल से कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं विष्णु ताल में तबला वादन, कलाकार पंडित सोहन लाल मिश्र।
1: यू वर लिसनिंग टू भैरवी दादरा। आवर आर्टिस्ट वॉज अवंती भट्टाचार्य। Accompanying her was Tarun Roy on the tabla and Sanatan Goswami on the harmonium. Continuing the concert, we now present an instrumental recital. Listen to a tabla recital in Vishnu Tal. This will be followed by a dhamar. Our artist is Pandit Sohan Lal Mishra. Accompanying our artist is Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to the tabla in Vishnu Tal. Our artist is Pandit Sohan Lal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप विष्णु ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहनलाल मिश्र। पंडित सोहनलाल मिश्र अपने तबला वादन का समापन धमार ताल से कर रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है धमार ताल में तबला वादन, कलाकार पंडित सोहनलाल मिश्र।
1: यू आर लिसनिंग टू द तबला इन विष्णु ताल। Our artist was Pandit Sohanlal Mishra. Accompanying our artist is Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to a Dhamar Taal. Our artist is Pandit Sohanlal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप धमार ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहनलाल मिश्र। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Dhamar Taal. Our artist was Pandit Sohanlal Mishra. Accompanying our artist was Sanatan Goswami on the harmonium. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप धमार ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहनलाल मिश्र। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Dhamar Taal. Our artist was Pandit Sohanlal Mishra. Accompanying our artist was Sanatan Goswami on the harmonium. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है रविराज शंकर का बजाया बांसुरी वादन. सबसे पहले आप राग भी प्रस्तुत करेंगे. मध्य लय बंदिश रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग विभास। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग श्याम कल्याण में एक रचना जो कि रूपक ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग श्याम कल्याण। आइए अब सुनते हैं सुश्री लक्ष्मी शंकर का राग माझ खमाज में छोटा ख्याल। बोल है आली री मोरा मनहर लीन हूँ, जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे सुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया माझ खमाज में छोटा ख्याल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं नैना देवी. आप सुनेंगे दादरा. बोल हैं गोरी बन के नो से चला जादुआ. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1980 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लर्न टू अ हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी. द रेंडिशन कमेंसेस विद अ दादरा. The accompaniment has been provided by Ismail Daddu Khan on the tabla and Sardar Khan on the sarangi. This was recorded in the year 1980.

अगली प्रस्तुति है कजरी, वो है धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुध बिसरत नहीं। नाउ लिसन टू अ दादरा मिश्र गारा।

लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी। बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नाउ द आर्टिस्ट फ्रेंडर्स, ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थी नैना देवी। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू विल लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मीता पंडित का गाया राग शंकरा. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है. बोल हैं सो जान ले बालम्बा और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं आली मोरी नीर भरन कैसे जाऊं. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और संगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal recital by Srimati Meeta Pandit. She first presents Rag Shankara, in which she will present Bada Khayal, set to Vilambit Tilwada Tal. The lyrics are So Jaan Liya Balamwa. This will be followed by Chota Khayal, set to Drut Teen Tal. The lyrics of this are Ali Mori Neer Bharan Kaisi Jaun. She is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the sarangi by Bharat Bhushan Goswami.

0: अभी आप मीता पंडित का गाया राग शंकरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और सारंगी भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग बसंत। मध्य लय ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं फगवा ब्रिज देखन को गैलरी। और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं पिया संग खेलोरी। तबले पर आपके साथ संगति की है प्रसून चटर्जी ने और सारंगी पर भारभूषण गोस्वामी ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग शंकरा प्रेजेंटेड बाय श्रीमती मीता पंडित। कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल, शी विल नाउ रेंडर राग बंत। शी विल फर्स्ट सिंग द मध्यम लय ख्याल फगवा ब्रिज देखन को चलरी विच इज सेट टू तीन ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल पिया संग खेलोरी। The Chota Khayal is set to Drut Teen Tal. She is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the sarangi by Bharat Bhushan Swami.

0: अभी आप मीता पंडित का गाया राग बसंत सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू राग बसंत प्रेजेंटेड बाय श्रीमती मीता पंडित। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती मीता पंडित। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चैटर्जी एंड ऑन द सारंगी बाय श्री भारत भूषण गोस्वामी। This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत. हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है भजन. गायिका है मंदिरा लाहिड़ी. तो लीजिए प्रस्तुत है भजन. कलाकार है मंदिरा लाहिड़ी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present devotional songs. We begin the program with bhajan by our artist Mandira Lahiri. Listen now to bhajan by our artist Mandira Lahiri.

0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के तहत भजन सुन रहे थे। कलाकार थी मंदिरा लाहिड़ी। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है भजन। कलाकार हैं पार्थो दास गुप्ता। तो लीजिए प्रस्तुत है भजन। गायक हैं पार्थो दास गुप्ता।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट मंदिरा लाहिड़ी। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इन म्यूजिक। वी नाउ ब्रिंग यू भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट Partho Das Gupta. Listen now to Bhajans by our artist Partho Das Gupta.

0: अभी आप भजन सुन रहे थे। कलाकार थे पार्थोदास गुप्ता। हिंदुस्तानी भक्ति सर्किट कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है भजन। गायक हैं नोनी दत्ता। तो लीजिए प्रस्तुत है भजन। कलाकार हैं नोनी दत्ता।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन्स बाय आर्टिस्ट पार्थोदास गुप्ता। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट नोनी दत्तो। Listen now to bhajans by our artist Noni Dotto.